0: बस है पठान, बस है बास पठान को दीनों बिपर बताई।
1: तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साध संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा विच श्रवण कर रहे हां प्रसंग श्री चमकौर साहब अचानक तुरकां ने हमला किया सहिदा बेग छरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने। दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की थी कि मेरी स्त्री नूं खो के लै गया पठान बसी पठाना वाला। इस प्रकार देवदास नाम है ब्राह्मण का, जाबर खां पठान है। महाराज जी ने बाबा अजीत सिंह जी नू 100 के करीब घोड़ सवार दे के भेजिया। शाम 2 घड़िया दिन बाकी सी जदों चले ने, सारा पेंडा तय करके उत्थे पहुंचे। रात नूं जाके घेरा पा लिया। गुरां दा वचन सी कि सिर्फ कल्ले पठान नूं ही लियाउणा, होर किसी नूं तंग नहीं करना। महाराज दा वचन मन के पठान नूं बन्न लिआंदा रस्सियां नाल, अते उस ब्राह्मण दी स्त्री नूं भी नाल लै के आए है। आ के महाराज नूं फतेह बुला के सजे हन दीवान दे विच। आओ अगे श्रवण करदे हां सतगुरु महाराज ने की सजा दित्ती, की उपदेश दिंदे ने खालसे नूं। प्यार सत्कार नाल गज के आखो सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु
0: साहिब जी। जो पई तुरक सुबत जै सहज सुभाए, जाए अचानक घेरो पाए।
1: सहज सुभाव की बिना किसे डर तो बिना किसे खौफ तो, ये साडा राज है, मैनू केड़ा कोई कुछ कह सकदा, मैं जो मर्जी करा। इस तरह आराम दे नाल जबर खां सुता पिया है, अचानक ही जाके सिंघां ने उहदे घर नूं घेरा पा लिया।
0: किसो न आगे शस्त्र उठायो, गयो पठान सबंध चलायो।
1: क्योंकि हो सकदा कवि जी कहंदे ने किसे ने अग्गों शस्त्र नहीं उठाया, हो सकदा वो इलाके दे विच बदनाम होवे जबर खां, पहलां भी लोकां दीआं धीआं भैणां नूं चुक लिआउंदा होवे, ताइयों किसे ने उहदी मदद भी नहीं कीती है, कोई विरुद्ध भी नहीं बोलिया है। सिंघां ने जाके बड़े आराम दे नाल उसनूं पकड़ लिया।
0: जिजनी को इक तुरंग चढ़ायो, एक कुरीत फल सबन सुनायो।
1: ब्राह्मणी नूं बाहर लिआंदा, पठान नूं भी खड़ा कर लिया, पिंड वालिआं नूं इकट्ठा करके। सिंघां ने उहदा कसूर सुनाया, बई असीं इहनूं ऐवें नहीं लै के जा रहे, इहने आह कुकर्म कीता है, इस करके असीं इहनूं पकड़ के लै के

0: एक पूरे जट ने भेजा सी दल बिदार जिहड़ा घोड़ा सी महाराज का पहला ए दूजे का नाम सी दल शिंगार ए दल बिदार एक है बेगी एक नीला सतगुर के घोड़े बदलते रहे जदों चंगा घोड़ा आया सोहना इस प्रकार के नाल महाराज ने वह घोड़ा हुक्म किया कि लैके आओ
1: मिष्ट कृत को रातव करो अब लो पली पांत प्रित परो
0: हुण उहनू चंगियां निहारियां खवाईयां चंगा घिओ आदक जां देना जां मिठा पा के देना ऐसियां निहारियां खवा के सोहनी पालना कीती होई सी
1: आज पाए कर दीन शिंगारो भूखन करन हमेला डारो
0: महाराज कहने अज पाई उहदे ते सोहनी काठी पाओ ते उहदे गले दे विच जिहड़ियां हमेलां हुंदियां ने गहना हुंदा गल दा सजा के चंगी तरह घोड़ा लै आओ
1: कंचन के को जेवर पहरावो पले त्यार करके लै आवो
0: सोने दे सोहने गहने पाओ भले तरीके नाल साडा जिहड़ा घोड़ा है ए तैयार करके लै आओ
1: हुक्म मान सेवक किए त्यारा अलंकार कंचन शिंगारा
0: हुक्म मान के सेवक ने सोहने गहने पाए जिथे जिथे तक सजा सकते सी गुरां दा सुंदर घोड़ा सजाया
1: कलगी धरी सीस पर खरे लूल हमेल सजावन करे
0: कलगी सोहनी जिहड़ी सी उह सजाउणा कीती घोड़े उहदे वी कलगी लग जांदी सुंदर अते लूल हुंदे ने मोतियां दे छब्बे सो इस प्रकार दे नाल अरबी दा अखर होण करके मोतियां दे जिहड़े सोहणे छब्बे सी उह लाउणा कीते जां मोती लटकाउणा कीते हन
1: कबका दे कर लियायो तहां प्रभु बिराजे बैठे जा
0: सोहनी लगाम पा के घोड़े नूं उत्थे लै आया जिथे सतगुरु महाराज

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुरतीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ करना निज तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गए है के जवै, उकसे उपर चढ़बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर चढ़न लगे,
1: उछलियो घोड़ा बल को भरियो, ने आसन पर श्री प्रभ थिरियो।
0: घोड़ा उछल गया उस वक्त, छाल मार गया। उस वक्त सतगुरु महाराज फिर घोड़े उते असवार नहीं होए।
1: अवनी पर तिस्ते थिर खरे, दाहन पुजा चटक बो करे।
0: महाराज वापस उतरिया, एकदम धरती ते खड़े हो गए, पर सज्जी बांह नूं एक झटका वज्या थोड़ा जिहा। एकदम घोड़े ने छाल जो मारी, सतगुरु फुरतीले आप भी बहुत ने, एकदम दे नाल अणजाण बंदा हुंदा तां घोड़ा उहनूं सुट दिंदा, पर सतगुरु सच्चे पातशाह तां आप मालक ने, सृष्टि दे अंतरजामी सतगुरु जाणदे ने की होण वाला है, इस करके सावधान रहे।
1: जडे बोर पीड़ा कुछ पए, सी तुरमाल संग बंद गए।
0: जदों दोबारा फिर घोड़े ते चढ़े, बांह विच कुछ पीड़ होई, झटका वज्या बांह नूं, फिर सेवक ने चिट्टे रंग दा एक रुमाल

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जांदा है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो पुनजननी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छाला भी मरवाइया, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वह भी समझ गया कि गुरां दे जदों सुते सिद्धी सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आ के उतरे महिलां दे सामने माता

0: पनियो सुनो तुम सकल गिरंदा, क्यों न भविखत बात विचारो, सिर पर शत्रु प्रबल विचारो।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा सात संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज चल रहे लड़ीवार प्रसंग के सरवण कर रहे हैं। सतगुरु महाराज सचे पातशाह श्री आनंदपुर साहब विखे आ के सजे हैं, संगतां नूं बहुत बख्शिशां कर रहे हैं। सो इस तरह बहुत सारिया मर्यादावां सिखाउणियां सिंघां नूं अते देखना कि सिंघ किन्ने कु सुचेत होए ने अगे नालों। ऐसियां साखियां सरवण कीतियां सोहणियां, पहाड़ी राजां दा प्रसंग प्रारंभ होया है। बहुत दुखी हो के भीम चंद ने सारे राजां नूं चिट्ठियां पा के बुला लिया है अते आपस विच विचार कर रहे ने कि महाराज दसवें पातशाह नाल जंग आपां नूं करना चाहीदा, मिल के बड़े प्रबल दुश्मन ने अपने, नहीं कल नूं अपना राज खो लैणगे दबा लैणगे आपां नूं। सो इस तरह दीआं विचारां करन लई इकट्ठे होए ने, आओ सत्कार नाल इतिहास श्रवण करिए, रसना करिए, पवित्र गज के आखो सा

0: महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बादशाह जो नरंगा है वो तो भी नहीं डरते। ये तो बड़े भारी जिन्हों बाहों के इन्ना जोर है, इन्ने बली ने, इन्ह के सिंह इन्ने योधे ने, सो इस करके बड़े भारी योधे हैं।
1: देश उजाड़े छीने ग्राम कई बेर तीनों संग्राम,
0: इन्ह ने कई बारी अपने नाल जंग किया है, अपना जिहड़ा देश कहलूर है या होर इलाके ने ये सारे इलाके कई बारी इन्ह ने उजाड़ दिते हैं।
1: मुखी सेना के मरे हमारे आद केसरी चंद जुझारे,
0: ये केसरी चंद तो आद लैके होर जिन्हें योधे सन सारे साडे जरनैल राजे महाराजे ये इन्ह ने बहुत सारे जंग दे विच

0: एक खकार अखर खखा, एक लकार लीजिए कहने लल्ला, एक सकार तो ससा, इउं खालसा अखर बनया है।
1: तीनों को पद खालसा किनो अर्थ उचार,
0: तिना का पद है खालसा। तो इस तरह इन्हों का असि महाराज सच्चे पातशाह कहने अर्थ जिहड़ा है बना के तुहानू सुना दिता है कि खा ल ते सा, ये तीन अखरां दे विच इन्ना कुछ छुपया होया कि जिहड़ा कोई बंदा समझ नहीं सकता। जिवें कहा सी खंजोगी लंघोग और ग्रहणे मांज संग्रहणे मांज, इहदा ये अखर विच किन्नी डूंघाई है। या खंजोगी कहिंदे खा खालसा जोगी रूप होवेगा, ते खालसा जिहड़ा होवेगा लल्ले तों कहिंदे लंघोग भाव। खालसा दो चीजा हो गई, एक जोग होवेगा भोग होवेगा खालसे कोल, और संग्रहणे मांझ इकट्ठा करेगा खालसा नाम। इस तरह ही सतगुरु महाराज कहने इन्हां तुकां दे विच पद खालसा दे अखर अखर ते अर्थ कीते जिहड़े ने ना वह इस ढंग दे नाल कीते हन। तो जिवें कहिंदे ने जो है खंजोगी, तो जोगी हो गया लंघ भोग मैं जां संग्रहणे मांझ। तो इस तरह कहते हैं खालसा जोग ते भोग दोहां नूं मिलके विचरेगा। ते खंग दा अर्थ हुंदा नभ, नभ तो मराव मुराद हुंदा चिदाकाश। लंग भोग दा अर्थ हुंदा लंपड़ तो भाव, यह संसार दे जिहड़े भोग दे अर्थ इस प्रकार कहना। संग्रहण दा अर्थ है इकट्ठ करना मेल करना। इस तरीके नाल इह सारियां चीजां खालसे दे तीन अक्खरां विच ही ने। महाराज कहिंदे जे कोई इन्हां नूं विचार करे खा ते ला ते सा, ये तिना विचों ही सारा कुछ ही निकल आउंदा है। इस करके महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने खालस अखर नूं समझना सारयां दे वस दी गल नहीं, पर असी तुहानूं कुछ अर्थ इहदे करके दसे हन।
1: चौपाई इमकै तूसन भए गुसाई,
0: इउं कह के महाराज सच्चे पातशाह जी फेर नहीं बोले, फिर चुप हो गए।
1: देखत सब दिस दृष्टि चलाए,
0: देखदिया सारे पासे महाराज ने अपनी दृष्टि संगत ते चलाई है।
1: लखो सुभाए खालसे गुर को,
0: कहने सुभाव की कहने जो खालसा है ए गुरु रूप है अते गुरु खालसा है।
1: बुझो पुनजो संसे उर को,
0: फिर महाराज कहने चंगा खालसा जी हुण जेड़ा संसा सी तुहानू वो तुहाडा दूर करता, होर कोई कोई शंका होवे कहिंदे ओह भी पुछ लो।
1: श्री प्रभु किम वरतै वरतारा,
0: महाराज ये दसो ये जिहड़ा वरतारा आप जी ने कहा है ये किवें वरतेगा।
1: किम भाणा होवे करतारा,
0: ये वाहेगुरु दा भाणा किवें होवेगा सानू कुछ जरूर दस के जाओ जी।
1: समय कलो को होए,
0: कलयुग दे समय विच किवें किवें होवेगा वरतारा वरतेगा।
1: वध राज नरप कहीं अनसोए,
0: तो इस करके आप जी ने कहा कि राज वधेगा, राजा खालसा राज करेगा, ये राजे बनगे।
1: हृदय खालसे लालस लहो,
0: खालसे दे हृदय विच ये लालसा है जी।
1: भूत भविखत की गत कहो,
0: आने वाले समय दे कुछ बचन सानू जरूर सुनाओ।
1: इम सुन सिंघन की अरदास,
0: इउं अरदास बेनती जदों सिंघां ने कीती कि महाराज सानू दसो आउण वाला समा।
1: श्री कलंगी धर कीन प्रकाश,
0: कलंगी धर महाराज जी ने फिर कुछ बचन खालसे दे बेनती करन तों इउं प्रकाश प्रगट कीते।
1: चार लख बत्ती हजारां,
0: महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे इह चार लख बत्ती हजार।
1: कलू आर बल करी उचारा,
0: कहने भाई वेदा शास्त्रा च उम्र कलयुग दी इन्नी लिखी है चार लख बत्ती हजार साल कुल उम्र है, हले पांच हजार साल ही लंघिया कलयुग, पांच हजार साल च गेड़े खवाते अपने सारिया दे, तां हुण गाहां हले किवें लंघेगा। इस करके महाराज सच्चे पातशाह खालसा पुछ रहा जी, ये खालसा जी पुछदे ने सारे भी ये बनूगा की साडा।
1: जिसमें संत होए ब्रह्म ज्ञानी,
0: महाराज कहने ऐसी नहीं गल है जिदे विच बहुत सारे संत महात्मा ब्रह्म ज्ञानी गुरमुख होणगे।
1: सगरे दोख करें जोहाने,
0: जिहड़े रब दे बंदे होणगे रब दे प्यारे होणगे ओह सारे जिहड़े दोष ने दूर करनगे लोकां दे।
1: दोहरा ਕਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਕਾਰਨ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਇੱਕ ਬਰਕ।
0: ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲ ਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ

0: छत न रहे तनक तमाकू हिंदू जे छुए।
1: किसी मंत्र की जिहड़ी ताकत नहीं रहिंदी जे तनक तमाकू सेवी है। तनक मात्र भी तमाकू का कोई सेवन करता है, देव पितर तज जाए, पानी ताके हाथ का मदरा सम हो जाए।
0: अस मसलत कर कै समाए, सभा बिखे बिजलीन बुलाए।
1: इस तरह की जिहड़ी सलाह करके ए ब्राह्मण जेड़ा सी इस नू सभा दे विच बुला लिया।
0: सबन मलेचन आदर कीना, निकट बिठाए तपो थन लीना।
1: सारिया मुसलमाना मलेच्छा ने ब्राह्मण दा बड़ा ही सत्कार कीता, आओ जी बैठो जी। तो इस तरीके नाल ओ जेड़ा बहुत तपस्वी बंदा सी ओनू ठगण वास्ते ओदा धर्म तोड़न लई इन्हां ने बहुत सारा मान सम्मान दे के पहला एक बना ली स्कीम, उदे आधार ते इन्होंने इन विच बिठा लिया।
0: कंचन को हुक्का बनवायो, तिज दिखाए गुर संग मिलायो।
1: सोने का हुक्का बनवाया, शाही हुक्का, अते उदे विच ब्राह्मण दिखा के गुड़ मिला दिता। सो जिन्हां दे विच तंबाकू पहले मिलाया होया सी कहिंदे बस इहदे च आपां कुछ नहीं पाउंदे, आ थोड़ा जा गुड़ पाया है।
0: अपर बिपर के हाथ गहाए, तिसके आगे करे बनाए।
1: एक नकली जिहा ब्राह्मण खरीद लिया पैसों च, कहिंदे तू ऐ करी तेनू असी फड़ावांगे हुक्का पहला, तू फड़ के फिर इहनू फड़ाई तपस्वी नू, इह भरोसा करेगा कि हां जे इह वी तां मेरा ब्राह्मण भाई है, ते इस करके जद इहनू कुछ नहीं होया तां मैनू की हो सकदा है।
0: रिखी पिख कै सब संग उचारा, मैं ना करो ए अंगीकारा।
1: उस वक्त वो ऋषि उन्हूं कहंदे ने जिहड़ा रिखीक हुंदियां इंद्रियां, जिहड़ा अपनियां दसो इंद्रियां नूं काबू कर ले उहनां दा ऋषि है। इस करके महापुरश जां कह लो तपस्वी कह लो ऋषि कह लो, इहने एक वार तां साफ जवाब देता सारिआं नूं कि मैं नहीं इह पींदा, मैं अंगीकार नहीं करना माड़ी चीज।
0: भलो के बुरो नहीं सुध कोए, नहीं स्पर्शो दोष जे होए।
1: कहने चाहे चीज भली है चाहे बुरी है, चाहे दोष है जां कोई नहीं दोष है, मैं इनू अंगीकार नहीं करदा।
0: सुन कर जे मलेच्छ बुद्धवंते, हित निर्दोक करने उचरंते।
1: सुन के जेड़े उत्थे मलेच्छ सी बुद्धवंते, बुद्धि तो किसी की हो सकती है, रावण बड़ा चलाक सी, हरनाक्ष भी बड़ा चलाक सी। बुद्धि वाला मलेच अते बुद्धि वाला निर्मल दो प्रकार के बंदे ने, एक विवेक बुद्धि वाले गुरमुख हुंदे ने, यह बड़ी बुद्धि वाले चलाक बंदे, चलाक किस्म के बंदे जेड़े ने, ये चलाक बंदिया ने इस निर्दोष करने वास्ते इस तरह कहा।
0: सकल सभा को क्यों ना निहारे, मिल पीबत है स्वागत सारे।
1: कहने वह साडा दिमाग खराब है, आज सारे जाने पी रहे ने, सारी सभा पी रही है, एडे एडे साडे राजा साहब वजीर साहब छोटे वजीर साहब वह इन्ने इन्ने वड्डे बंदे इन चीज नूं पींदे आ, असी माड़े देखदे तेनू, असी भी तां इह कम करदे ही आ, ते जे तू इह कम कर लेगा फिर तेनू राजपुत्री नाल तेरी शादी होई आ, राजे दा जवाई है तू, ये कोई माड़ी चीज नहीं है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो बड़ी स्वाद चीज है, इस करके तेनू पी लेनी चाहिए है।
0: मैं दोष काव लोका, कंचन पावन को बनो का।
1: ये कादा दोष है भाई, ये देख सोने का बनाया हुआ हुक्का किड्डा वधिया हुक्का है, सोना तो वैसे पवित्र मनिया हुआ, आ फिर गुड़ पाया विच पानी पाया, होर से की पाया इहदे च, वो तंबाकू बारे नहीं दस रहे कि तंबाकू भी पाया है।
0: गुण सन मिले बिपर ले आयो, इत्यादक कह कह बिरमायो।
1: इस तरह सारे जाने जो कह लग जान फिर बंदे नु मनना ही पैंदा, कोई बहुत पक्का होवे जाल ठगा ने कह कह के कहने ए किधर चलिया बई कुत्ता लैके, कहने नहीं ये लेला है, दूजे ने भी यही कहा ठग ने फरलांग ते ओ खड़ा, कहने अज किधर लैके चलिया ए कुत्ता, कहने नहीं लेला है, तीसरा ठग भी कहना, चौथा कहना की गल कुत्ता चक्या होया, वो बंदा कहना मेरा ही दिमाग तो नहीं कितने खराब,

0: सुपते निसमें सतगुर मन पावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नौ सोच शनान।
1: तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साहब संग जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रही लड़ीवार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतान उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था के चमेली के फुल गुलाब के फुल लैके मत्था टेकया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी क्योंकि जब मन के अंदरों दुविधा मिट जाती है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखता है। उन्होंने गुरमुखों के तो दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धान केड़ी नदी के पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हाथ आ जाते तो भी कोई डर नहीं सी पर फकीर ने कहा खाली हाथ आना तो है वह बंदे दे मन दे अंदर जिवें काल खंदी आमदन वाला हाथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वह शुद्ध रूप में सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कवियां गुणियां ज्ञानियां पंडतां नाल कर रहे ने। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते सी ये कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के बचन आवे। सुते सिद्धी सतगुरु कवियां की जनरल नॉलेज देखते हैं किन्नी का है किन्ना कि इन्हों ज्ञान है। कई प्रश्न करे चाहे वह प्रश्न साढ़े संबंध रखते ने जा नहीं रखते कवियां दे ज्ञान परखना उन्होंने जवाब देने ने। उन्होंने जिहड़े उत्तर ने उन्होंने सुन के उत्तरां फिर सतगुरु दसणगे नहीं असल विच ये गल इस तरह नहीं है ये गल इस तरह है। क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्होंने भी निरुत्तर करनगे प्यार सत्कार नाल। आओ श्रवण करते हाँ प्यार सत्कार नाल दसना करिए पवित्र गज के आ

0: तप किया इस व्यक्ति ने उन्हें शादी की इच्छा अपने पिता नूं दस दी।
1: बुद्ध बलते कर बेबिद पाया तिसी बिपर सो ब्याह कराया।
0: बड़ी अपनी बुद्धि दे बल करके अपने पिता नूं कह के जोरो जबरी किवें ना किवें उस ब्राह्मण दे नाल इहने शादी कर लई।
1: तिजबर के रात दुचताई मैथन करे धर्म बिन साई।
0: इस करके मन दे च बड़ी दो चित्याई खड़ी होगी ब्राह्मण दे कि मैं तो शादी करनी, पहली गल तो मुसलमान ने मलेश कौम है, मैं ब्राह्मण पवित्र बंदा, ये गलत खाने वाले बंदे मलेश कौम नाल मैं शादी किवें कर सकदा, चलो जे शादी हो भी गई है तो मैं माड़ा कर्म नहीं कर सकता क्योंकि माड़े कर्म करन दे नाल मेरा धर्म भ्रष्ट हुंदा है।
1: रहो विचारत बस न बसायो पकड़ मलेचन सदन सुवायो।
0: सो विचारदा रहा विचारदा रहा, पहला तो घर ही ना वड़िया करे, फिर इन्हां दी फौजियां ने फड़ के राजे दी फौज ने फड़ के महिलां दे विच इन्हां दे कमरे विच लिजा के बंद कर दिता है।
1: द्वार किवार संजत करे निशा बिखै बासो कर फिरे।
0: सो द्वार जिहड़े सी दरवाजे बंद कर दिते, संगलियां ला दित्तियां, रात नूं उस कमरे दे विच इस नूं वाड़ दिता।
1: इस बिद दिजबे बस पा जबै वेद मंत्र को पट कर तबै।
0: इस तरीके जदों ब्राह्मण ने देखिया कि मेरा तो धर्म हुण सत्यानाश होण लग्या है ते इने मंत्र बड़े आउंदे सी, इने वेदां दे मंत्र पढ़ने शुरू कर दिते।
1: कोट लोको चो दिश रचियो तिसी अंतर फिर वै कर बचियो।
0: इहदे कोल इक मंत्र सी, दुआले लोहे दा कोट बन जांदा किला, जिवें कीर्तन 16 पढ़न ते महाराज ने कहा लोहे दा किला बन जाया करेगा, इस तरह ही इन्हां कोल मंत्र सी कि लोहे दा किला बन जांदा। इहनूं जबरदस्ती जदों राजकुमारी दे कमरे विच छड्डियांदा उहनां ने, इन्हें मंत्र पढ़ के लोहे का कोट चारे पासे बना लिया अपने।
1: तब अजमेर सुता अव लोका लो दुर्ग ते चौं दिश रुका।
0: अजमेर शाह की पुत्री ने देखिया भी यह तो बड़ा पंडित भगती वाला तपस्या वाला मंत्र जंत्र बड़े जानदा, इन चारे पासे लोहे का किला बना लिया।
1: कुछ ने जतन चलो बित राते खोल किवाड़ दे पिक प्राते।
0: कोई जतन न चलिया, फिर सवेर वेले जाके कवाड़ खोल दते।
1: और जामनी प्राप्त जबै कर मैं रोक दियो दिज तवै।
0: फिर जनो रात हुई फिर वो ब्राह्मण नु पकड़ के उस कमरे दे विच बंद कर दिता।
1: ये अंतर सुप्तम के काल पठै मंत्र आए कोट बिसा।
0: वो रात नु सौण समय फिर अपना मंत्र पढ़ लिया करे, फिर लोहे दा किला बन जा करे, फिर कुछ भी ना हो सके तो।
1: बिन चिंता सुपतै सुख पावै भई फोर बार निकसावै।
0: बिना किसी चिंता तो आराम नाल सोया करे लोहे दा कोट बना के। राजकुमारी निर्जतन सारे जतन निष्फल हो गए, सवेर वेले अपना मंत्र पढ़े लोहे दा कोट हट जा करे, फिर बाहर आ जा करे।
1: तब अजमेर शाह के पास मंत्र शक्त दिज करत प्रकाश।
0: उस वक्त अजमेर शाह दे कोले मंत्रां दी जिहड़ी शक्ति सी ब्राह्मण दी उहने प्रगट कर दित्ती।
1: कयो मलेचन सब समझाए इसको जानो सुगम उपाए।
0: जदों राजे नूं पता लग्या कि मंत्रां नाल लोहे दा कोट कर लैंदा, उहने सारे मलेश अपने कट्ठे कीते, काजी मलाणे दूजे तीजे, कहिंदे ओए इहदे कोल इहो जिहा मंत्र कित्थों आ गया, इहनूं भ्रिष्ट करन दा कोई तरीका कढो, लड़की नाल शादी कीती इहने, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਜਾਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਧਰਮ ਸਭ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ।

0: कलयुग पुत्र, कलयुग दे विच ओ बंदे नूं तू चंगा मन्नी, जेड़ा बंदा अपनी इस्त्री विच जती होवेगा ओ तो डरी, क्योंकि वह बंदा बड़ा चंगा है। जेड़ा सच दी विचार करेगा की खाना ते की नहीं खाना, वह बंदा भी चंगा, ओदे कोल ना ज्यादा जाई, तंग ना करी उहनूं। अपनी नारी विच सती बरता होवे ते अखाज दे खाण विच बिरती विच बरागवान होवे ते चित विच सच करके धार लै गल, ऐसे पुरुषां नूं कदे तंग ना करी।
1: सतजुग मेरे सिर बसो पुजा बसो तित्रे,
0: कहने सतजुग तां मेरे सिर ते बसदा है। कहण लग्या ब्रह्मा बाहां विच मेरे त्रेता वसदा है।
1: द्वापर बसियो जंग मम तू चरणन को से,
0: जेड़ा द्वापर है युग, ब्रह्मा कहंदा ए मेरी जंगा विच वसदा है, अते जेड़ा कलयुग है ए मेरे पैरां विच वसदा है।
1: अंग अंग की मुक्त ए वेद मांझ लिख देन,
0: कहने इस तरीके दे नाल जेड़ा ना वेद विच ए गल लिख दिती है कि धर्म दे केड़े अंग नाल ब्रह्मा दे केड़े अंग भाव युग विच मुक्ति होनी है, कलयुग विच किवें मुक्ति होनी है, सतयुग विच किवें होनी है, त्रेते विच किवें, द्वापर विच किवें। सारियां युगां दा आपो अपना धर्म है, सतयुग सत, त्रेता जगी, द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों देणे। कल केवल नाम आधार, कलयुग दे विच केवल नाम दा ही आसरा चलेगा, बाकी सारे आसरे खत्म हो जाणगे।
1: सोई सो साची भले सकल समाला कीन,
0: सो इस प्रकार दे नाल कहिंदे ओहो पिछे कही गल सच्ची है, ओह गल भली है, सारी दा संभाला तुहानू करा दिता है, पा अथवा तुसां समूला कर लिया, याद कर लिया, मैं तुहानू दस दिता कि मेरे समय विच की वरतारा वरतेगा।
1: अपनो अपनो राज कर तुम आयो मम धाम,
0: ब्रह्मा ने सानू कहा कि आप अपना राज करके तुसी वापस मेरे घर जा जाना।
1: कर कर करनी कल्प लग पाइयो आए आराम,
0: तो कर करके अपनी करनी कल्पां तक, एक कल्प जेड़ा हुंदा है, एक कलम जैसा हुंदा कि दस क युग जदों लंघ जांदे ने, इस तरीके नाल अपनी करमी करके, करमी आपो अपनी करके, फिर मेरे कोलां सेनता विच ब्रह्मा दे वाक कहने, ये वाक ब्रह्म सेनता विच कहे हुए इन्होंने लए ने, कि जप जिहड़ा चार प्रकार दा इस ढंग दे नाल, चार वेद, ये सारियां चीजां जिहड़ियां ने ये सुनाईयां कलयुग ने आके महाराज नूं।
1: ब्रह्मा वाक कै संगता परा पसंती जाप,
0: तो ब्रह्मा ने संगता विच कहंदे अगे जाके दसदे ने कि जाप लिखे ने, परा बाणी, पसंती बाणी, ए सारियां बाणियां दे जाप।
1: मदमा वैखरी जाप रस चार वेद इस थाप,
0: फिर जिहड़ी बाणी लिखी है मदमा बाणी है, फिर इसे प्रकार बैखरी बाणी, बैखरी मुंह नाल बोल के जिहड़ा जाप हुंदा, मदमा कंठ विच हुंदा, पसंती फिर हिरदे च, परा बाणी नाभी च, ते इसे प्रकार अगे रोम रोम दा जाप है, तो इन्हां विचों किसे द्वारा नाम दे जाप दा रस लवे बंदा।
1: नारायण देव है पराका नरपसियंती इष्ट,
0: तो नारायण देव जेड़ा है ये परा बाणी दा है मालक, ते जेड़ा नर है ये पसियंती दा इष्ट भाव, जेड़ा देवता श्रेष्ठ इष्ट नूं कहंदे ने, तो इस तरीके नाल कहंदे ने कि जेड़ा देवता है ना पसियंती बाणी दा, ये नर आप है, नर ते नारायण दोवें विष्णु दे अवतार मन्ने हन।
1: स्वास ठहरावै नाब कर उठे तरंगी तोज,
0: इस तरीके नाल कहिंदे जे नाभ दे विच स्वास ठहरावेगा तो इस तरीके नाल फिर उहदे विचों आनंद दी लहर उठदी है, इस तरह दे इन्हां दे जाप आदिक दस रहे ने।
1: नाम भजन की जुगते मथुरा बख्शी मोज,
0: तो नाम भगत दी जुगती ए दसी है कि इस तरीके दे नाल भाई जाप करना यह कुदरती ही हो जाता अपने आप, जे मूंह नाल वाहेगुरु करो तां यह बैखरी बाणी हुंदिया हुंदिया कंठ विच जाप अपने चलिया जांदा अपने।
1: नाम भजन की जुगते मथुरा बख्शी मोज,
0: तो नाम भगत दी जुगती ए दसी है कि इस तरीके दे नाल भाई जाप करना यह कुदरती ही हो जाता अपने आप, जे मूंह नाल वाहेगुरु करो तां यह बैखरी बाणी हुंदिया हुंदिया कंठ विच जाप अपने चलिया जांदा अपने आप ही, फिर हिरदे विच चलिया जांदा, फिर धुनी विच जाप चलिया जांदा, फिर रोमां विच जाप चलिया जांदा, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ।
1: ਇਹ ਸਾਖੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਰਤ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸਮ।
0: ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਸੁਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਖੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜਦਾ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਐਵੇਂ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਕਲਯੁਗ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰੇਗਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਮੈਥੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਬੜੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦੜੁੱਕੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹਿਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਔਖਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਆਪਾਂ

0: मंत्र जंत्र कल माए।
1: सतगुरु महाराज ने वचन किया कलयुग के समय के विच एक बार जेडे मंत्र जंत्र ने तंत्र ने धागे तीत ने टूने डामण ने इन्हों का बहुत

यार 2 मिनट बड़ा सोहना सुपना है। सुपना में कभी सोना हो? सुपने का मतलब होंगे झूठ, जो नहीं सोते सुने, जो नहीं अज असि जिथे खलोते हैं ये भी जो नहीं वो समझ रहे अपने आप आपको। सतनाम श्री एक गल पक्की मान लो कि शरीर है नहीं, आपको सतनाम श्री सुपने आ शीशा वेखे, शीशे अपने आप नग बनने लगे वेहते हो ना, उथे भी पले तो पला जन दिया, जे तुसी बोलते हो भी बोलता है, जे तुसी हिलते हो भी हिलता है, जे सब कुछ करता एक दिन खलो के क्यों नहीं कहते पानी का गिलास ले गया। गिलास ले लिया कभी अर्थ होता है कि दिस रहा है नहीं, दिस रहा साहब कहते तुसी भी एक सुपना वेख रहे हो संसार दे लोग खुली अख का, साहब कहते ने आपा कहने मेनू कल उठाया आ जे तुम हम करते रहते हो ना। कई बार मैं बंगला साहब जी कथा करता अमृतवे की मेनू बहुता गुरु कहता मौत से बोल, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मौत एक योजा बचन जे तो बंदा डर के जाग सकता है, आखो सतनाम श्री। बाबा कबीर जी ने जागया पता की कहना, कहना मैं बैठा सा बंदगी कर रहा मेरी मां ने मेरे मोढ़े ते आके हाथ रखा, पुछ इतने की कर दिया एकाग्रता ना लग सीधा खलो के आनंद आओ की करना है। ते बैठा सी मणिया चे, मणिया समझते शमशान कभी चुकया मां मैं बंदी ला लिया पुत ठाकर कमरे च जा ना, मंदिर जा, मस्जिद बच जा, इबादत गावे जा, इतने मणिया चीन क्या मां आ वेख्या ही किसी की भैन सड़ रही, उसे किसी का संस्कार हो रहा है, एक इसकी भैन नहीं एक मां ही, और किसी का भरा ही, और किसी का प्यो ही, आ किसी का चाचा ही सड़ रहा। जिस तरह यह सड़ रहे ना मैं अपने मन को समझाना कि कह तकबीर सुनो मन मेरे, मैं इन डरा सुनो पिया, कह तकबीर सुनो मन मेरे, यही हवाल बनेंगे कल तू चिर चिर करके तेरिया हड्डियां सड़निया, उठ जाग मैं अपनी आवाज नवाजा देना। आखो सतनाम श्री। साहब कहते ने यह जरा सोहना सुपना तुम देख रहे हो, किसी ने पूछा जी सुपना कितना टुकदा है, वह कहना जो सुपना जी आया जिदन ओनू यह पता लग जाए ना कि मैं सुपना वेख रहा, सुपने जरा बैठा है ना सुपना जरा वेख रहा है ओनू यह पता लग जाए कि मैं बस उधर सुपना टुटना शुरू हो जाए। जेडे भगत जना गुरमुखा न्ञान हो जाता है कि असि के दुनिया के जो कुछ वेख रहे ये सब सुपना है, झूठ है, जग तलेखना सब जान लो रे पीत कह नानक थिर न रहै ज्यों भगती पीत, सब झूठ है। ते मेरे तेग बहादुर पिता जी पुछया महाराज ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲੀ ਹੱਥ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਦਾ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਉਹ ਬੰਦ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਮਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਘੇਰੀਆਂ ਉਧਰ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਅੰਬਾਲੇ ਘਰ ਆ, ਮੈਂ ਏਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਐਡਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਉਹ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਰਹੀ, 90-95 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਨਿਰੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਅੱਖ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਦਣ ਟੁੱਟਾ ਜਿੱਦਣ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਨਾ ਮੇਰਾ ਉਦਣ ਟੁੱਟਾ ਜਿੱਦਣ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੀ, ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨੀ, ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਉਹ ਧੀਆਂ, ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਹੋਏ ਬੈਸਤ ਰਾਜਾ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਨੇਤਰ ਪਸਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ, ਕੋਈ ਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਦਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੇਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਤਰਾ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਬਾਲੇ ਘਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਅੱਖ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਕੁਛ ਨੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਣਾ।

सिमरन कर याद रखा करो, प्रभु का सिमरन गर्भ ना बस है, प्रभु का सिमरन दूर जामा यह कुछ घर चो भजा चाहते हो बाबिया को गलत बीता वाले को कदी कबर से तुरे करता जीव कदी कितने तुरे करता सिर्फ चौदह मेरे घरों कले कलेष नट जाए महाराज मेरा काम चल पवे तो महाराज पातशाह की कह रहे सिमरो सिमर सिमर सुखावत अगे पढ़ो की लिखे क्या इतो भी मिट जू फिर कबर से की लैन जाते ना झूठे पेंदे हो गुरु तो नाले धागे तवीता आले को जाके गुरु तो झूठे पेंदे गुरु तो झूठे ना पाओ एक बचन कह के समाप्ति करूंगा तन गुरु ग्रंथ साहब की कहते रे एक बार नोट करो रेजी नलज रेजी नलज कहते विशाजन वेलो कि मिठा बोलता सतगुरु पर आ बचन इतने आके क्या रेजी नलज लाज तो हे नाही ये नलज विशर्म जीव तो विशर्म नहीं आती आखिर की गलती होगी ए गुरु का सिख हो गया कबर के मथे टेकन दे हर ताज करत हर ताज ताज मैंने छड़ के इनू छड़ के फत कानून ते जाई होर ना वल तुरया जाना है ते फिर दृढ़ करवाया इन्दे नाले तू कहना हमरा ठाकुर सब ते उच्चा इन्दा नहीं तू ते सब ते उच्चा तेरा ठाकुरा ते फिर उन्हां कोल की लैन जाना है जे जिउंदा तेरा ठाकुरा ते मरिया कोल की लैन जाना है सतनाम श्री ये गल ते गुरबाणी दा वचन के जीवते को जीवता मिले बोलो जी इतना लिखा कि जीवते को मुए को मरे नु मरिया मिलता है जीवते नु जीवदा मिलता है तुरदे नु तुरदा मिलता है उड़दे नु उड़दा मिलता है ते जेड़े फिर मरिया दी कबरां दे उत्ते चले गए फिर वो जीवदे थोड़े ने मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह जी कहते रहे तेन शर्म आनी चाहिए जीव तू धन गुरु ग्रंथ साहब वर्गा ठाकुर छड़ के इधर उधर धागे पूरी तरह के चक्कर के ना पै गुरुद्वारे आया कर गुरुद्वार गुरु द्वारे हुए सोची पाई सी बोलो गुरु द्वारे हुए इतने गुरुद्वारे आया कर वेख इतने किसी नु कोई धागा नहीं मिलता कोई प्रीत नहीं मिलता इतने इको ही दवाई मिलती है सर्व रोग का बड़ा मिठाई बड़ा मिठाई बड़ा मिठाई गुरबाणी दे विच लिखिया है हर बिन कछु न लागे बोलो हर बिन सारे बोलोगे हर बिन भगतन को मीठा भगतन को मीठा कोई गल दुनिया की कोई लक्चर कोई विचार संत जना नु चंगा नहीं लगता एक रब की बंदगी तो बिना हर बिन कछु न लागे भगतन को मीठा अगे लिखिया आन स्वाद सब फिक्या बोलो आन हर कितना पता लगा गुरु अर्जन देव साहब ने कर निर्णय दीठा कर निर्णय करके गुरु ग्रंथ साहब किन्ने ने देखा है कि वाहेगुरु शब्द जिहड़ा कोई शब्द दुनिया ते मिठा नहीं जिन्हां दे अंदर रस वग पिया जिन्हां नूं नाम दा रस आ गया मेरे सतगुरु पातशाह जी किन्ना प्यारा वचन मेरे कान विच इन्ना क्या दो चार मिनट हो ली एक बार आखो सतनाम श्री वाहेगुरु जे तुसी अकागरता बख्शो ते धन गुरु अमरदास महाराज जी आ रचना जिहड़ी पनीर खांदी दुध पींदी जूस पींदी तरह तरह के खाने खांदी आ ओनू रचना नु खातबो के क्या ए रचना पहलो ए कहो हा ए रचना गल करो इहदे नाल ए तू अनरस राज रही जेड़ा रस तेनू गुरु ने दसिया अख सतनाम श्री ओनू कहते हर रस हर नाम हर रस भोगो हर नाम हर रस ये रसना तू ओ वाहेगुरु की गल छड़ के चुगलियां बड़ियां कर दी क्यों नहीं करते हैं आदो सतनाम श्री बोलो ना संगत साहब विच बैठे हो एक बार सच ता बोलो चुगलियां कर देना अपा कर दे एक गल हुण गुरबाणी का फैसला सुन दे भी चुगल ते निंदक दी मौत कितना हुंदी चुगल ते निंदा करन वाला पहलो जे हुण तुहानू इह गल दस दित्ती जावे ते हो सकदा है तुसी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं बेनती करो महाराज मेरी रसना चुगली ना करी बाणी विच लिखिया वचन है कि जिहड़ा चुगली करदा है ते निंदिया करदा ओह रुल के मरदा रुल के ओहदी पछाण नहीं लैंदा कोई पानी नहीं पिउंदा ओहदी किरिया नहीं कोई सामदा
ਸਭ ਗੰਦ ਉਹਦਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰੁੜ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਰੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਨੀ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨੀ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭਦਾ, ਸਭ ਗੰਦ ਉਹਦਾ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁੱਖੇ ਰੁੜ ਹੋਏ, ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਥਾਉਂ ਪਾਏ, ਹੱਥ ਹੀ ਨੀ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਲੈਕਚਰ ਜਾਣ ਲਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਰਸ ਪੀ ਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜੀ ਫਰੂਟ ਖਾ ਲਾ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੇ, ਜਿਕਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨੀ ਬੁਝਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾ

0: सतगुरु कहिंदे कर हर माला टिंड प्रो ध्यान दियो जी जग दियां रूहां एकाग्रता बख्शियो कहिंदे आ जिहड़े सवास आ इन्हां नूं आ बजुर्गां ने वेखे खूह वगदे सी खूह आखो वाहिगुरु खूहां दे विच इक चीज पानी भरन नूं जिहड़ी वगदी सी उहनूं कहिंदे
1: टिंड
0: माल ते जिहड़ियां माल दे उत्ते हुंदियां सी उहनूं कहिंदे टिंडा उहनूं टिंडा कहिंदे कर हर ट इक खूह बणा आ जिहड़े सवास ने तेरे इहनां नूं माला बना के माल बना के एक एक सवास टिंडा बना महाराज इस माल नूं खिचे कौन एकाग्रता बख्शे इस माल नूं तू आए नूं खिचे कौन कहिंदे तिस पीतर मन योग सरवण कीता इस पीतर बलदां दी जगह ते इहनूं खिचण नूं किहनूं योग मन जोड़ो जो का मतलब जोड़ दो जो दो आप कहने बलद जोड़ दिते ए खूह दियां माला टिंडा खिंचण लई मन नूं बलद बनाओ ते मन तां साडा सिमरन करदिआं वी दौड़दा रहिंदा है साहिब कहिंदे ने तूं मन नूं जोड़ के इन्हां टिंडां नूं खिच ते अगे जाके कहिंदे अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत ते भरो क्यारे बोलना अमृत सिंचो भरो क्यारे क्यारे क्यारे जेडे खेती बाड़ी करते उन्हां नूं पता है एक छोटिया छोटिया वट्टां पा के खेत दे विच की पा दी दे खेती बाड़ी करते तुहानूं पता पिंडां दे रहिण वाले खेती बाड़ी करन वाले नूं पता क्यारे पा दी दे साहिब कहिंदे ने अंदरों मन नूं जोड़ के आ जिहड़ी सवासां दी टिंडां दी माला इहदे राहीं मन नूं जोड़ के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे ते मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी पुछया महाराज शरीर ते कहड़े क्यारे ने आखो सतनाम श्री गज के बोलो सतनाम खेतां विच ते क्यारे हुंदे इत्थे क्यारे कहड़े कहिंदे अखां नाम जपण वाले दीआं अमृत नाल भर जांदीआं अंदरों आना के अमृत अखा जो अमृत बोलने लग पा तो सतनाम श्री पढ़ते नहीं ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत बगल लग पा ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी बरसन लग पा फिर आखिर महाराज होर कि क्यारा भरीये महाराज कहिंदे रसना अमृत नाल भर जांदी गल करन लगदा वा ते कहिंदे फलाना बंदा भजन करदा मुंह चो अमृत डोलदा नाम जपण वाले दी रसना कदी फिका नहीं बोलदी नाम जपण वाले दी रसना सदा मिठा बोलदी अमृत वर्गा साहिब कहिंदे ने मन नूं जो इस सवासां दी माला बना मगर इह जे बरतना होया जे मन नूं तूं ना विच जोता सिमरन विच मन नूं ना जोड़िया ते टिंडा दी माला चलनी नहीं थल्लेओ अमृत आउणा नहीं ओह इतना है गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कोई मन नूं विच जोड़ना जरूरी है अमृत सिंचो भरो क्यारे ते अगे लिखे तो माली के ओह तो गज के बोलो ना तो

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो।

एक मिनट लई शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सा, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नू जगत विच जगया जिदे बारे भाई गुरुदास जी